जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अरसूम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश करते हुए यहां से हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन के आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सुबालो शिव का नाम हरि हरन की आवाज में सुंदर सा भजन आज रविवार की प्रोग्राम में बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है ठाकुर भीम सिंह की आवाज में, जरूर आप सुनते ही रहना।

ठाकुर भीम सिंह के आवास में बस पीस की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा और रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है एक प्रोग्राम जो सालों से रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है प्रोग्राम भजन यात्रा। अब की बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

लोकी सेवा में रेडियो SBS की जरिए सुनने वाले स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302266611। चले प्रोग्राम में अनूप जलोटा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। अनूप जलोटा जी की आवाज में ये सुंदर भजन आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

इसमें सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक भजन पेश किया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी की आवाज में।

सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं दुनिया की कोने कोने में हॉलैंडेस के अंदर हॉलैंडेस के बाहर। तो चले प्रोग्राम में अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है ये सुंदर सा भजन आप सुनते ही रहना।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। भजन यात्रा प्रोग्राम रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सोमवार से लेकर के और शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक और हर शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक भजन यात्रा प्रोग्राम बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम एक चालीसा की ओर हम आपको ले चलते हैं और वो भी सूर्य चालीसा बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आज रविवार का दिन है तो सुंदर सा सूर्य चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है श्री सूर्य चालीसा अनुराधा पोटवल जी की आवाज में।

अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में सूर्य चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ भी आज रविवार का भजन यात्रा का प्रोग्राम खत्म समाप्त किया जाएगी। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ

7 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुन वालू रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालू की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज रविवार का दिन है, 7 जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हमारी सभी सुन वालू को हेलो खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर आप सुनते ही रहना। रविवार का दिन 7 जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तो आप सभी सुन वालों के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज की ये पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में ये पहला गाना जो पेश किया जा रहा है।

आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में खूबसूरत गाना भी आपने सुना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0322656660। किशोर एलता मंगेशकर प्रोग्राम में।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी गीता दत्त की आवाज में। गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना बस प्रोग्राम में सुनते ही रहना। फिल्म का नाम है

हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई, चलिए प्रोग्राम में तलत जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

महमूद की आवाज़ में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तलत के बाद हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर है। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और पुरानी फिल्म अनारी का गीत आप सुनते ही रहना।

अनारी का गीत पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

हार्ट ऑफ रेबेलियंस माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

de film Girls, गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कौन सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना होगा एड फिल्म नील कमल, मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में।

The Heart of the Millions, the Mighty Mukis की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले हम आपको ले चलते हैं मुकेश के बाद लता जी की ओर। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई। लता मंगेशकर के बाद मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना फिल्म का नाम जब जब फूल खिले।

सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए बहुत से सुनने वालों है जो हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए बस भी सुनते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा सुनने वालों अपना मोबाइल फोन के जरिए मोबाइल टेलीफोन के जरिए इसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं रेडियो SBS.NL।

आवास में ये गाना पेश की गए ढूंढे तुझको नैन दीवाने, गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। चले एक बार फिर से लता मंगेशकर की ओर। लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सब।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म बॉबी का एक गाना पेश किया जा रहा है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: मुझे कुछ कहना है
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम बॉबी, बॉबी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। गाना कब उठा मुझे कुछ कहना है और अब की बार मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में। चलिए मुकेश की आवाज में एक और खूबसूरत गाना, साथ में होगा लता मंगेशकर। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म बरसात की ओर, और गाना का बोल है पतली कमर है।

रेडियो वेस में इसके जरिए मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी। फिल्म का नाम था बरसात, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले आज की प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। हम आपको ले चलते हैं फिल्म चोरी चोरी की ओर।

रेडियो SBS के जरिए गाना बज प्रोग्राम में मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम मदर इंडिया की ओर। उसी फिल्म का ये गाना।

एक ही आवाज में खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में फिल्म नसीब की ओर। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज।

किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम नसीब उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई। तलत महमूद और गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए गाना बस पेश की गई सोनू निगम की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का नाम, और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अबकी बार उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में चले ये गाना की ओर और गाना का बोल है मुझे इश्क हुआ।

मिक्स में इसके जरिए अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुनवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2-62-66-11। दार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप दार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं इश्क विश्क फिल्म का गीत की ओर। कुमार सानू एंड कविता, यह कहिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है इश्क विश्क फिल्म का नाम।

आवाज़ में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है शान और श्रेया जी की आवाज़ में

शान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से श्रेया जी की ओर और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

जब वी मेट फिल्म का नाम उसी है। फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई। हमारी सभी सुनने वालों जो खास तौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अलका याग्निक एन हरि हरन। अब की बार प्रोग्राम में गाना जो पेश किया जा रहा है,

हरि हरन की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं, आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। कुमार सानू

रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम आप सभी सिल्वल की सेवा में पेश किया जा रहा है। वेबसाइट radio.sbs.com.au। नीरज और श्रेया जी की आवाज में अपनी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस्तरों का भी पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी थे। गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में अबकी बार बैनी दयाल एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

Benny Dayal en Shreya Jiki आवाज़ में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में आशकिंग और साथियों की आवाज़ में। गाना का बोल है बारिश।

के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। पापोन प्रोग्राम में और पापोन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ये अधूरी कहानी है। फिल्म का नाम पापोन के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में सभी सुनने वालों को वेलकम और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू एनाल का प्रोग्राम में होगा।

सानू और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

सानू और अलका की आवाज में फिल्म एक रिश्ता, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ खूबसूरत नखमे बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। हेमा सर डीसाई एन शंकर महादेवन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

और शंकर महादेवन की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। सुन वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560। इसी डार के नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। 24 पर दाग यानी कि 24 घंटा लगातार ये तार की नंबर आप सभी के लिए बस होता है। या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए radio.sbs.nl। अपना मोबाइल टेलीफोन की जरिए भी आप ईमेल कर सकते हैं। जरूर आप जाइए radio.sbs.nl वेबसाइट पर। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हरिहरन एंड चित्रा की आवाज में एक गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

एक फिल्म जिसमें काफी खूबसूरत नगमे लाए गया है। इसी तरह से अभी आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू जी के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम दिल है तुम्हारा। चले अब की बार फिल्म धड़कन की ओर। एक बार फिर से होगा उदित नारायण, अलका याग्निक एंड कुमार सानू प्रोग्राम में।

film Dhadkan. उदित नारायण और अलका साथ ही साथ कुमार सानू जेकी आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम धड़कन, उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2266-6611।

की गई आप सभी सुन बालों की सेवा में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में प्रेम अगन फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई।

Game Film Kanaal. Radio SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

दर्शन की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी अलका जी की आवाज में। अलका जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म का नाम सोल्जर।

तेरे बिना कुछ भी नहीं। रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। 9 मिनट फोर हाल्फ थ्री स्टूडियो टाइट हो चुका है और सुनने वालों आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रोग्राम भी खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। अभी हमारे बात ग्लेन रामबाली की जरिए बस प्रोग्राम पेश किया जाएगी और ठीक 3 बजे से बैठक गाना बैठक गाना जो सालों से रेडियो SBS की जरिए पेश किया जा रहा है, जरूर आप सुनते ही रहना 3 बजे से।

नई संगीत में नई आवाज में आपके लिए पेश की गई। सुनो बलो हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए, अभी हमारे बात ग्लेन के जरिए बस प्रोग्राम पेश किया जाएगी और 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम आप जरूर सुनते ही रहना। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम जो सालों से रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है, द एडख एक्त बैठक गाना हंगामा रेडियो SBS के जरिए बस पेश किया जा रहा है और वो भी सालों से। चले एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, मेरा दिल ये पुकारे कि तू आ जा, गाना जो पेश होगा। और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए, मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन, मिलूंगा आपसे कल सोमवार का खास प्रोग्राम लेकर के और वो भी सुबह 7 बजे से। तब तक के लिए हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए, प्रोग्राम सुनते ही रहना हमारे बात।

रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। किशोर कुमार के आवाज में ये ओपनिंग नंबर हमारा हिस्सा के प्रोग्राम से, बस सुनते रहना। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार ग्लेन, सुनते रहना हमारा हिस्सा की प्रोग्राम यहाँ से।

0: जादू तेरी नजर पूरी तरह और साथियों के पास में अभी आप सुनते और आपकी बात सुनते रहे ना किशोर कुमार के पास में।
1: अगर तुम सच कह रही हो तो फिर मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। ये आदमी तुमसे प्यार करता है और तुम्हें पाना चाहता है।

किशोर कुमार के आवाज में अभी आप सुनते मोहम्मद रफी साथ में नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज में

तीन बजकर इस वक्त 5 मिनट गुजर रहा है, 5 मिनट ओवर 3। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर रेडियो SBS, वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम।

0: हरी शिव बालक के वास में भी आप सुन रहे थे कि मुखरा मुखरा क्या देखे दर्पण में,
1: जिया थक थक लागे
0: के जिया धक धक लागे जबकि गोरिया के याद आवे,
1: थक थक लागे
0: रविंद्र सिंह शिवनाथ के वास में,
1: गोरिया

खोरिया के याद आवे तो जिया। रविंद्र सिंह सिंहनाथ के वास में भी आप सुनते बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS। रामदेव चैतू के वास में

तेरी आंखों में बस गया कोई रे। मोती माला बोला सिंह के पास में अभी आप सुनते रविंदर बोला सिंह के पास में बस सुनते रहना। से वीन वीन रामशरण का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

0: काफी तरह से वीन वीन राम शरण का पसंद अभी आप सुनते प्रोग्राम से।
1: बेवफायो तेरा मुस्कुराना भूल जाने की
0: अमित सिंह गुलाम के वॉइस में

हामिद गुलाम के पास में। अभी आप सुनते प्रोग्राम से सत्यानंद, सत्यानंद रेखा के पास में सुनते रहना के गोरिया के चहले जवनिया में गिरधारी श्राद्ध फ्लोइटन फ्लोइटर वायद से राजन गिरधारी का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

0: सत्यानंद रेखा के पास में भी आप सुनते के गोरिया के चढ़ले जवानिया में गिरधारी स्त्रात फ्लोइटन फ्लोइटर वाइद से हमारा बीरमान राजन गिरधारी का पसंद भी आप सुनते
1: छलकी ना जाए अजी छलकी ना जाए अजी छलकी
0: सारा धीरे चलो
1: ओ गोरी धीरे चलो गगरी छलकी ना जाए
0: तपोस तपोस से प्रेम मताओ का पसंद सुनते रहना।

0: के गोरी सारा धीरे चलो
1: गोरी धीरे चलो।
0: रविंद्र सिंह शिवनाथ के पास में भी आप सुने थे स्टापोस, स्टापोस से प्रेम मताओ का पसंद भी आप सुने थे। हर दिन के पास में के संधिनिया के बम्पर है भारी से अच्छाई कुमार नंदा का पसंद सुनते रहना।

0: के समझनिया के बम्पर है भारी। परदीन परदीन नवसाज के पास में भी आप सुनते हैं तरफ से अजय अजय कुमार नंदा का पसंद
1: बम्पर कितना भारी।
0: Best listening Bollywood radio station, Bobby Sherry Track Anderson. Janicky Thames Drift, number 37.

राजेश यू नंदन के आवाज में सुनते रहना के कर ना सके हम प्यार का सौदा।

रजेश शिव नंदन के आवाज में अभी आप सुनते प्रोग्राम से के कर न सके हम प्यार का सौदा। आनी बोधा के आवाज में बस सुनते रहना।

काला गोलनवा जुलूम करे आनी बोधा के वास में अभी आप सुन रहे प्रोग्राम से विज्ञानवती चैतु के वास में विद्रेख विद्रेख से येनी येनी महेश की पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

0: के पन घतवा बसल बरिदो विज्ञानवती चैतु के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से ट्रैक से यानी महेश की पसंद भी आप सुनते
1: हैं।

द्रौपदी के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से। रशिका रशिका दीनदयाल के वास में सुनते रहना।

स्टीफन धर्मपाल के वास में भी आप सुन रहे थे के थारे राधिका तुमको पुकारे, तैनाक से हिसला यांकी की पसंद भी आप सुन रहे थे।

आओ के गोरी जुलुम कर गई, क्रिस राम खिलावन के आवाज में भी आप सुनते आओ रब की बार सुनते रहे ना देनाग से बेया बेया रमोतार की पसंद सुनते रहे ना।

त्रिबेन पंचम के वास में भी आप सुनते हैं। मोतीमाला भोला सिंह के वास में सुनते रहे ना आपकी बार। और देखा जाए तो रोटरडम, रोटरडम से सीला, सीला की पसंद सुनते रहे ना। भिखारी सारी दुनिया, मोती माला भोला सिंह के वास में, रोटरडम से सीला की पसंद।

के आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, और सब छोड़ जाता है। हर रविवार को शाम में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS। अर्जुन अवतार के वास में सुनते रहना।

दीपक कन्हई के आवाज में अभी आप सुन रहे प्रोग्राम से और अब की बात आनंद भजन के आवाज में सुनते रहना।

आनंद भजन और साथियों के पास में भी आप सुनते के कौन फुलवा फुललबा तोरंगनवा में और साथ में महकलबा कोना कोना में।

हीरालाल महाबीर के बाद में भी आप सुनते और अब की बात हरोल्ड रामकुमार के आवाज में के चिरैया मोरे गावे हरोल्ड रामकुमार के आवाज में लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहे।

के चिरैया मोरे गावे। हरोल्ड राम कुमार के पास में अभी आप सुन रहे प्रोग्राम से।

कि हम झूलनिया नहीं पैरब तेवरा नजर लगावेला गर्भरन रामधार के पास के आवाज में भी आप सुन रहे थे और अब की बात सुन रही ना क्रिसम छेदी के आवाज में रजेश उदित का पसंद सुनते रहना के पारी करो जी।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंजलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंजलि क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है इस आई द फिल्म अजनबी एंड आई द फिल्म दबंग 3 कम खसों तो जावेद अली नैना लड़े।

अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आपने सुना सुन मितवा। फिल्म का नाम है लगान। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म गदर से। उदित नारायण की आवाज में आप सुनिए उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।

फिल्म मेड इन चाइना से आपने सुना नेहा कक्कड़ की आवाज में ओढ़नी, और अब आप सुनिए सोनू निगम और अलका याचिक की आवाज में फिल्म रेफ्यूजी से। ये फिल्म पहला फिल्म है अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। ऐसा लगता है जो ना हुआ है होने को है।

0: दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, क्वाम द प्राचीन फिल्म धड़कन फन अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी. Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we dan verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony Band ki khaas peshkash. Suniye.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचनिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। असीस कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

मेरा दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी वास आउट द फिल्म मरते दम तक. एंड देन हाउ फर्दर मैट आउट द फिल्म जवान जाने मन. मेरे बाबूला, gezongen door Harshdeep Kaur en Akhil Sachdev, is het volgend liedje in het programma Geeton Kelleher.

तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, वॉज आउट द फिल्म बॉम्बे। एंड आउट द फिल्म दिल ही दिल में कम्स गसोंग दोर हरिहरन एंड स्वर्णलता। इम्तिहान हम प्यार का देखे, राह देखे, क्या है नतीजा, डोला डोला मन डोला।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।